0: ngay rume ge nyu tham de ani nga lo gul le di sa ba nge cha chong so nge gen la ge se ya chem da ji gu yu num chu rume da gu ju rume do zo mi ta ding de ge zam bu ling ge da chi ka zo gang lo kyap che shu su ri cha de yo re ani di de di chi tu na ya bu yo re ai dam do de we ja da gu ri ji ne sa mi da ran che ju yu be rume chu tu na ya bu or su mu du lo chi ju ge lu mang che de de yin ji ba la
1: 但是那个对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
0: रिंगने खारे जामी ना ले जी ताती थार चिंबो ची आपको ची जामी ना ती निम्न नजी के वो चिंबो ता लब चिंबो अनि खासे ता तेजों ता दिले के केंग के ता शुम आंबो ची जामी ना ता जोगा नजी के ता जोगा सं कामस गोर बा कामन नजी के ता वो युआ योरी तले ता वो दे खने सिंगुल में हमा वो कुदे ती ता ता ता आरे कब दुदु के ता नेवो दे चे दुदु अनि तेवे जांग के ता ने थांगे के लंबु ती मुठिनें तंगे चेया ता ने चिक्चे शोल का दी आरे ता दे लंबु जांग बे के परु दे ने दी कुंजो याल ता गन नशी के लोजें दी नलो दे तंगे यु ने नलो जिन्हें दी पा देन ने जिक चंडर रस दे पा लेले रस दी जिक देन सो रे दे ले तंगे दो उने दी ना दे न्यामशे जेमें ना थांगे दो लो दे जिक देन दे गांजो मी के थांजो के जिक देन दा मी के मा थांवे जिक देन छाचां लो ठीशा लो छेचां थांगे दी उने गांजो मिरे जी दी उने जम सिजी दा देबा चुंहा मिरे दो लो दे ने मिरे के ता नागत जंबे दो लो के जुजे दो लो दे ता गांजो यहां पुरी की थांगे जी ने सा बुद्ध थांगे दे के दो वाले
2: 每一次看似轻盈的蝶变背后，都藏着无数个暗夜里破茧的勇气在低吟。从田间地头俯身耕耘的身影，到清晨校门口的温情守望，从阿里兰大门风雪中挺拔身姿，到守护生命的医者，从默默深耕匠心独运，到服务窗口绽放的春风化雨，无数劳动者以汗为路，浇灌希望的种子，以肩为梯，托举明日的朝阳。